0: Swan 99.9.
1: सो खुश रहा करो, खुश रखिया करो, रुसन रसाउन से की रखिया, जिंदगी बहुत छोटी है। अगे करतार सिंह दुग्गल की लिखी हुई कहानी तृष्णा सुनते हैं। तृष्णा अखर तो बहुत वधिया इस कहानी दे विचों देखते हैं की तृष्णा निकलती है।
2: इस तो पेशतर कि जो कुछ करना है मैं शुरू करा, तुसी जे कुछ पूछना होए कोई सवाल, लेडी डॉक्टर ने व्यवहारक उस तो पूछया। कोई नहीं, रजनी ने गच्चो गच आवाज विच कहा, पर जो कुछ मैं करन जा रही हाँ इसलिए मैनू अपने आप तो नफरत है। ऑपरेशन थिएटर विच कुछ चिर लई खामोशी छा गई। तुहानू लगता है कि जो कुछ करन दा फैसला होया है तुसी उस लई तैयार नहीं, चट को बाद लेडी डॉक्टर ने सवाल किया। नहीं, मैं तैयार हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती हाँ मैं इसनू प्यार करती हाँ, बेटी है तां की। लेडी डॉक्टर फिर खामोश हो गई जिवें जको तक विच होवे। शुरू करो, रजनी दियां पलकां विच हुण अथरू डलक रहे सन। डॉक्टर शुरू करो, मैं तैयार हाँ। कुछ चिर लई फिर खामोशी। इसनू स्पैकुलम कहंदे ने, मैं चढ़ावांगी, हुण डॉक्टर बोली, तुसी वेखना चाहोगे? नहीं, रजनी ने सिर हिलाया। कोई सवाल? पीड़ बहुत होवेगी, रजनी ने पुछया। नहीं, दर्द नहीं होवेगा, बस कुछ कु तनाव जिहा महसूस होवेगा। लेडी डॉक्टर दियां अखां विच रजनी लई अंतां दी हमदर्दी सी। जदों उस एदी बांह फड़ी तां रजनी नूं लगा जिवें उहदे हथ यख ठंडे होण, उहदे डॉक्टरी छड़ां वर्गे ठंडे। मैं हुण बच्चेदानी दे मूँह ते एक टीका लावांगी, लेडी डॉक्टर बोल रही सी। रजनी बेहिस लेटी, उहदियां अखां दे सामने उहदे लख सुफने जिवें नीले आकाश विच चिलमिल तारियां वांग टिमक दे एक एक करके छुप रहे होण। परतूल नाल उहदा परनाया जाणा कितनी बदमगजी होई सी, पर आखर उस अपनी गल मना लई सी, अपने मनपसंद वर लई सब नूं राजी कर लिया सी। फिर उहनां दे फेरे होए, हाय किन्ने चावां नाल उस विआह कीता सी। उहनां दी सुहागरात, हनीमून, परतूल दी पोस्टिंग, उहनां दा निवेकला घर, उहदा मां बणन दा फैसला, उहदी गोद दा भरिया जाणा। बस हुण 5 मिंट लगणगे, पीड़ बिल्कुल नहीं होवेगी, लेडी डॉक्टर बोल रही सी। कितनी खुश सी रजनी, जिवें धरती उत्ते उहदे पैर ना लग रहे होण। पर इह परतूल स्क्रीनिंग दी क्यों रट लाए होए सी? उसनू तां बस मां बनना सी। परतूल जदों कम ते चला जांदा सी, इतनी वड्डी कोठी जिवें उसनू खाण नू पैंदी होवे, उसनू तां बस मां बनना सी। उसनू तां बस एक बच्चे नाल खेडना सी, उहदा मन परचिया रहेगा। तुहाडे सिर्फ 8 हफ्ते होए ने, कोई खतरे की गल नहीं, जे 1-2 हफ्ते होर हो जाते तो मुश्किल बन सकती सी, लेडी डॉक्टर मरीज का तरवास बना रही सी। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग, उठते बैठते स्क्रीनिंग, परतूल की मुहब्बत, वह हार के राजी हो गई सी। की फर्क पैना सी, वह खबरे तावला सी ये जानने लई कि बेटा होवेगा कि बेटी। दीवाना अंडा बच्चेदानी की दीवार ना लगा हुंदा है, लेडी डॉक्टर कोल बैठी अपनी गल जारी रखे हुए सी। असी उस नूं वैक्यूम कर लवांगे, वैक्यूम तुहानूं पता ही है ना, बस जिवें कलीन तो तुसीं गुदड़ नूं वैक्यूम कर लैंदे हो। मैं वलायत विच वेख्या है, उत्थे सड़कां दी धूड़ सड़कां दे कोथर नूं वैक्यूम करदे ने। बेटी सी, बेटी सी तां की, पर परतूल दा मूँह क्यों लै गया सी? पीला भूख चेहरा, वह तां बेटी लई उड़ीक रही सी। बेटी होवेगी, अपने वीरे नूं खिडाया करेगी, उहदियां कौड़ियां गाण वाली भैण। वीरा हौली हौली आ, तेरे घोड़िया नूं का। कोई तकलीफ तां नहीं? लेडी डॉक्टर ने रजनी तों सहानुभूति वजों पुछया। रजनी ने अपनी छाती उत्ते हथ रख्या होया सी, जिवें उहदे सीने विच कटार लगी होवे। परतूल बेटी लई तैयार नहीं सी, उसनूं तां बेटा चाहिदा सी। बेटा की ते बेटी की? उहनां दे बच्चा आ रहा सी, उह डैडी मम्मी बनन वाले सन। जे कोई तकलीफ होवे तां मैनूं दसणा, लेडी डॉक्टर बोल रही सी। हर रोज़ इस तरह के केस करीदे ने, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਘਰ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਗੋਦਮਗਾਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਉਡੀਕ ਲੈ, ਰਜਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਪਰਤੂਲ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਜਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਰਤੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਫਾ ਖਫਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰਜਨੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਰਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਸੁਣ ਥੋੜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਵਹਿ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੜ ਗਈਆਂ, ਚੱਕਰ ਚੱਕਰ, ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ। ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਰਤੂਲ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਫੇਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਪਰਤੂਲ ਘਰ ਅੱਪੜਿਆ। ਰਜਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ। ਪਰਤੂਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਢ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਜਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪਰਤੂਲ ਕਲੱਬ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰਤੂਲ, ਰਜਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਰਤੂਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਕਲੱਬ ਅਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵਾ। ਰਜਨੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਰੁਆਂਸੀ ਰੁਆਂਸੀ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਗਮਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਨੀ ਪਿੰਨੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਸੱਜਿਓਂ ਕਦੀ ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਰਜਨੀ ਖਬਰੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘ ਤੇ ਜਾ ਪਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਗੱਲਾਂ, ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਨਾ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਨਿਕਲੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਭਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਸੂਟੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਜਨੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਈ, ਕੁਰਲਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੁਕਾਰਦੀ ਤੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਵਲਿਆਸ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਪਲੰਘ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਮਚਕੋੜਦੀ। ਰਜਨੀ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਰਜਨੀ ਇੰਜ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਰਤੂਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਵਲੀ ਤਾਵਲੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਪਰਤੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਰਲਿੰਗ? ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਰਜਨੀ ਪਰਤੂਲ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਰਾ, ਦੋ ਵਰੇ, ਤਿੰਨ ਵਰੇ, ਚਾਰ ਵਰੇ, ਪੰਜ ਵਰੇ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਥੱਕ ਲੱਥੇ, रजनी फिर मां नहीं बन सकी, ना रजनी मुड़ मां बन सकी, ना रजनी अपनी बच्ची नूं भुला सकी। ठीक उस दिन जदों उसने अपनी सफाई कराई सी, रजनी हर वरे पूजा पाठ कराउंदी, गरीब बच्चियां विच मठियाई फल कपड़े वंडदी, सारा दिन रोआंसी रोआंसी उहदियां पलकां भिज भिज जांदियां। इंज वेली बैठी बैठी ढेर सारी पढ़ी, जिले दे इतने वड्डे अफसर दी त्रीमत, रजनी ने कारपोरेशन दे स्कूल दी नौकरी कर ली। बच्चियां नूं पढ़ाउण विच उहदा मन परचिया रहेगा, नाले उह तां स्कूल दे हर टीचर तों वध पढ़ी सी। एक अद वरा ते रजनी नूं स्कूल दी मुख अध्यापका बना दिता गया। हुण पढ़ाउण दे नाल नाल रजनी ने स्कूल दे प्रबंध दी जिम्मेवारी भी संभाल ली। कारपोरेशन नाल सरकार नाल चिट्ठी पत्री, टीचरां दा सहयोग, बच्चियां दीआं लोड़ां, स्कूल दे दाखले। बच्चियां नूं दाखल करन वेले एक दिन बड़ी दिलचस्प घटना हुई। कोई माता पिता अपनी बच्ची नूं दाखल कराउण आए, बच्ची जिवें हथ लाया मैली होवे ते उहदा नां एवें ही कुछ सी। ए तुसीं बच्ची दा नां की रख्या है? जे बदलना चाहो तां हुण वेला है, बदल सकदे हो। स्कूल दे रजिस्टर विच दर्ज नां सारी उम्र चलेगा। हंसू हंसू चेहरा रजनी ने बच्ची वल वेखते हुए उस दे मापिआं नूं कहा। मापे मुख अध्यापका दी गल सुन के सोचां विच पै गए, एक दूजे वल वेखण लगे, उहनां नूं कोई नां जिवें सुझ ही ना रहा होवे। फिर बच्ची दी मां इकदम बोली, तुहाडी बच्ची दा की नां है? त्रिश्ना, मेरी बच्ची दा नां त्रिश्ना है। अत्यंत प्यार विच रजनी अब्बड़ वाहे बोली, तां फिर इहदा नां वी त्रिश्ना ही दर्ज कर दिओ, बच्ची दे पिता ने कहा। ते इंज खुश खुश हसते हसांदे ओह बच्ची दा दाखला हो गया। मुख अध्यापका रजनी दी आदत, दाखल करन वेले जिस बच्ची दा नां उस नूं ना जचदा, ओह बच्ची दे मापिआं नूं याद कराउंदी। जे तुसीं नां बदलना चाहो तां हुण वेला है, बदल सकदे हो। स्कूल दे रजिस्टर विच दर्ज नां सारी उम्र चलेगा। ते अक्सर मापे सतिकार वजों मुख अध्यापका नूं कहिंदे, जो नां तुहानूं चंगा लगदा है ओही रख दिओ। रजनी नूं तां त्रिश्ना नां चंगा लगदा सी, ते नवीं दाखल होई बच्ची दा नां त्रिश्ना रख दिता जांदा। करदे करदे उस स्कूल विच ढेर सारियां कुड़ियां दा नां त्रिश्ना दर्ज हो गया। रजनी दियां बेटियां किसे नूं त्रिश्ना कह के पुकारदी ते उहदा वात्सल्य डुल डुल पैंदा, उहदे मूंह विच माखियों वर्गा सुआद घुल घुल जांदा। हर क्लास विच एक तो वधीक कुड़ियां दा नां उस स्कूल विच त्रिश्ना सी। चौहां पासे त्रिश्ना ही त्रिश्ना हुंदी रहिंदी। रजनी मैडम दियां बेटियां।
1: यह सी करतार सिंह दुग्गल की लिखी हुई कहानी त्रिश्ना। सो स्कूल से हर पासे त्रिश्ना त्रिश्ना ही हुंदी सी। बहुत ही वधिया नाम त्रिश्ना। सो आस है कि तुहानू पसंद आई होगी। समय इस वेले 9:43 हो गए ना, तुसीं सुन रहे हो अपना मन पौंदा पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम मेला गीतां दा स्वाद 99.9 FM तो शाम कुमार दे नाल। चलो अगे गाना सुनते हैं मोर। अगे कंधा ते मोर मोरनियां छापियां हुंदियां सी, हत्थां नाल बनाईयां हुंदियां सी, लिपियां हुईयां कंधा ते उत्ते मोर जरूर बनाउंदे सी। जदों छोटे छोटे बस्ते लैके जांदे सी उत्ते भी कढ़ाई की हुंदी सी। ते अगे गाने च देखदे हां कि ये कीड़े मोर दी गल करदी आ।